भगत वछल सदा सदा कृपाल रहाओ, आद अंत मद तू है प्रभ बिना नाही कोय। हर पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए, करन हर जस नेत्र दर्श रसन हर गुण गाओ।

तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाउ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भाया। प्रणवत नानक तिनके सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवां, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कित न काम। मिल साध संगत भज पे केवल नाम। सरन जम लाग भव जल तरन कै, जन्म ब्रिथा जात रंग माया कै रहाउ। जाप तब संजम धर्म न कुमाया, सेवा साधन

भोगतेरहम। खड़ग के तमें सरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोगते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल भिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखे अन को छय करता।

चौपई संबद सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस फुन तीन कहिज भाद्रव सुदी अष्टमी रब वारा तीर सतद्रव ग्रंथ सधारा एत श्री चरित्रोप ख्याने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त आप जू दोहरा दास जान कर दास पार की जय कृपा अपार आप हाथ द राख मोहे मन क्रम वचन विचार चौपई मैं नग्न से प्रथम नाऊ किसन विसन कब हूं नह त्याऊ कान सुने पहचान न तिन सो लिब लागी मोरी पग इन सो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार वहां गह की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिया चुन चुन सतर हमारे मरिया देग तेग जग मैं दो चल राख आप मोहे और ना दलें तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरी सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहब मैं किंकर थारा दास जान द हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघार प्रथम तरह भागवत को ध्यान बाहर करो कविता।

अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र भेद सब वो भेद कहें हम एक न जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो। दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया बाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तगा बहु हरि केरा मन जिने बसाया कह

करे तेरा। कार्ज सब सवारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो बसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावै सदा सिवत सलाह तेरी, नाम मन बसावै। नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा।

प्यारे मिले फरीदकोट के निवासी जो ये उपराला कर रहे हैं, ये समागम सजा रहे हैं। जिस वेले फरीद जी फरीदकोट पहुंचे, अगे पिंड दा चौधरी एक किला उसार रहा। फरीद जी तुरदे तुरदे पुजे, मोडे ते सी कंबली ओलाई झाड़िया ते पा दिती। जां झाड़िया ते कंबली पाई आवाज आई, इंज जापया जिमें कमली पुकार पुकार के पे कह रही है, फरीदा तू मैनू ला के रख दिता है, तेरी ते सोभा ही मेरे नाल है। संसार साध संगत भेख ते डुल जाता है। गुरु घर विच तीन तीजां दा कोई बहुता वड्डा महत्व नहीं है, भेख भवनी हठ ना जाना। मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा, मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे। भेख भवनी हठ ना जाना, नानका सच गहर है। भेख गुरु नानक साहब जी ने जिस वेले उदासियां धारण कीतियां, उस वेले उदासी भेख बनाया, बाबे भेख बनाया। उदासी की रीत चलाई, उदासी बाणा पै रहा। पर जिस वेले करतारपुरे आके वस गए, उस वेले पहर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया पासा, उस वेले उदासी बाणा उतार दिता। संसारियां वांगू साधारण कपड़े पा ले। फरीद जी नू आवाज आई, फरीदा तू मैनू ला के रख दिता है, तेरी सोभा मेरे नाल है। संसार भेख ते डुलदा क्योंकि ये उत्तों ही तकदा है ना, ये अंदर तक पहुंचे ही नहीं, ये अंदर तक चाती पावन दी इसकी समर्था ही नहीं है। गुरु की संगत जपो सतनाम। फरीद ने आख्या, कमली तू सचमुच कमली हो गई है, तेरी मत होश टिकाने नहीं, मत मारी गई है, कमली हो गई है, तू समझनी है तेरे कारण मेरी सोभ है। आख्या हां, तू मैनू पैरना ते फिर जिस नगर विच जाना है उत्थे तेरी सोभा होंदी है, कोई साधु आया कोई महात्मा आया वो फिर तेरी सेवा कर दे। फे फकर नू करना चंगा, पावे हालती ओहो बेहाल होवे,

जब लग सिंह रह बन माए तब लग बन फूले ही नाए जब सियार सिंह को खाए फूल रही सगरी बन राए जितो बुढ़े हारो तिरे गुरु प्रसाद पार उतरे दास कबीर।

गोविंदा। बिन नामे सुखा संसार अगन तृष्णा जले बारो बार सोई करे दे हर दियो पावे सदा सुख शरीर पाणे चित लावे अपना प्रभु सहज सुभाए नानक नाम वसे मन आए बसंत महला तीजा माया मो शबद जलाए मन तन हरिया सतगुर पाए सफल बिरख हर के द्वार सचि बणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच।

आप सबत जगे, जिस आप कृपाल करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिब लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संतो, जो भगत जना की पत राखे बिच कल जुग अगे। जन नानका अंकिया मेरे राम राय, दुश्मन दुख गए सब भगे। सारंग महला पंजमा चौप दे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर मूर्त को सतगुर मूर्त को बल जाओ, अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर प्रतपालक भगत बछल हर नाओ, जा को कोई न राखे प्राणी तिस तू देहो असराओ। न धरियां तरन गत्या गत न थाव्या तू थाओ, दह दिस जाओ तहां तू संगे तेरी कीर्त कर्म कमाओ। एक अस्ते लाख लाख ते एका तेरी गत मित कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाई सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसट हर साधन स्यों लिवलाओ, जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्शमन चाओ। सारग महला पंजमा हर जीव अंतर जामी जान, करत बुराई मानख ते छिपाई साखी भूत भवान रहाओ। बैसनो नाम करत खटकर्मा अंतर लोभ जठान, संत जबा संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान। करे सोम पाक हिरे पर दरबा अंतर झूठ गुमान, शास्त्र वेद की विद नहीं जाने व्यापे मन कह मान। संध्या काल करे सबरता ज्यों सफरी दमफान, प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब करमान। सो ज्ञानी सो वैष्णो पढ़िया जिस करी कृपा भगवान, उन सतगुरु से परम पद पाया उदरिया सगल बिस्वान। क्या हम कथे किछ कथ नहीं जाने प्रभावै तिबे बुलान। साध संगत की तूरिक मांगो जन नाक नानक पायो सरान। सारंग महला पंजमा अब मोरो नाचनो रहे लाल रंगीला सहजे पायो, सतगुर बचन लहो रहाओ। कुआर कन्या जैसे संग सहेरी प्रे बचन उपहास कहो, जो सुरजन ग्रह पितर आयो तब मुख काज लजो। ज्यों कनको कुठारी चढ़ियो तब कबरो होत फिरो, जब ते सुध पय है बारे तब ते थान फिरो। जो दिन रहन तो लो बजो मूर्त करी पलो, बन जा बनहारो उठ सुधारियो तब फिर बाज ना पायो। जैसे कुतंब जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो, तब ओ भिन्न दृष्टो कहो नान कुंभ जले महडारियो। अंबे अंब मिलो सारंग महला पंजमा अब पूछे क्या कहा, लैनो नाम अमृत रसनी को बाब।

देह नाम कर अपने चेरे सज्जन सच्चा पातशाह सच्चा पातशाह सिर शाह देशा हो जिस पास बैठिया सोहिए जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा हो सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाहे दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाहे वाहे गुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

निमाने को प्रवते रो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मिल जानो आपे आपन संग्या प्रवराते तुमरी उस्त तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण आरे अन्या सो प्रसदा संभाल जिनकी आत चीत रख नानक निवि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूर्ते कम दिष्टानी जंतु साज सवार सिगारिया गर्भ अगर मैं जिने वारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद प्याओ पर साख सैन मुख प्याओ बैठ को दैन एह निर्गुण गुण कशु न बूझे बख्श लियो तो नान सीजे जय प्रसाद धारो पर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसै जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमला जय प्रसाद भोगे सब रसा सुल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त भाव करने तरसना तजे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मुड़ंद व्यापे नानक काड लियो प्रव्यापे आद अंत जो राखण हार तस्यो प्रीत न करे गुवार जाकी सेवा नवनित पावे ता स्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकर सत सदा हजूरे ता को अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगे मान तिसे विसारे मुग्ध जान सदा सदा पूलन हार नानक राखण हार भारत त्याग कौंडी संग रचे सास छोड़ झूठ संग मचे जो शरणा सो अस्थिर करमाने जो होवन सो दूर प्राणे छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग साई तिस पर हरे चंदन ले पुतारे तोये कर्तव प्रीत पासम संग होए अंधकूप में पतत विकराल नानक काड लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पजारा करे दिन रात बार पेख अंतर मलमाया शब्द सुनाई किस करे छपाया बार ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान अंतर अग्न बार तन सुहा गढ़ पात्र कैसे तरे था जाके अंतर वसे प्रव्याप नान तेजन सह समात सुन अंदा कैसे मार्ग पावे कर कहले ओ निभावे कहां बुझार्द बुझे डोरा निज कहिए तो समझे पोरा कहां विष्णु पद गावे गंग जतन करे तो विश्व भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू आस गवन करतार करना में दीन बेनती करे नानक तुम्हरी कृपा तरे संसाई सुहाविन चीत जो बहराई तासो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर वसे अंध खेल माया रंग रसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल नावे मूड़े चीत वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहू जुक्त बयाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी राज तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोय न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रशोड़ कै लागे आन सुहाय नानक कौ नसी जय बिन आवे पत जाए अष्टपदी दस बस दूले पछे पावे एक बस कारण विखोड़ गुआवे एक भी न दे दस पी हिरले तो मूड़ा को कां करे जिस ठाकर से ना ही चारा ताको की जय साधु नमस्कार जाके मन लागा प्रमीठा सर्व सूख ताऊ मन बूटा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया आगनंद साहु अपनी दे रास खाद पीत बरते अन्न उलास
ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਿਸ਼ ਬੌਰ ਸਾਹ ਲੈ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੇ ਬੌਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕੀ ਬਖਤ ਜਾਗੇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨੇ ਮਾਥੇ ਉਸੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਉਹ ਬਿਨਸੇ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਚੱਲ ਨਿਹਾਲ ਲਪਟ ਰਿਓ ਤੈ ਅੰਧਾਰ ਪਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ ਤਾ ਕੋ ਆਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾ ਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹਮੇ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਵਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਅਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪਸੂ ਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ ਅਸਤਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀ ਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰ ਕੋਈ ਰਹੇ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਬਿਖਤ ਵਰਤਰਿਆ ਰੂਪਾਦ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੁਤਾਵੇ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਹ ਲਵਾਵੇ ਮਿਥਿਆ ਤਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਵਾਸਲੇਦ ਵਿਕਾਰਾ

मुखावता के दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेक बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बर जाओ। रहत अवर कचे अवर कमावत, मन ने प्रीत मुखो गंडलावत। जान हार प्रभु परवीन, बार पेख न काउ पीन। अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिसके अंतर से निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। जो तुम भाने तिन प्रजाता, नानक गुण जन चरण प्राता। करो बेनती पार, ब्रह्म सब जाने। अपना किया आपे माने, आपे है आप। आप करत नवेरा, किसे दूर जनावत, किसे बुझावत नेरा। ओ पाप से आन सब ते रहत, सबके जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर असमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध यार लो मो, बिनस्याय अमेव। नानु प्रशरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। जय प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मने अंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, अड़ पैर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याइए त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे, तिजे त्याग कथा लुभावे। जय प्रसाद सुख से सुई जय, मन आठ पैर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद सबको माने, मुक्ता को जस रसन मखाने। जय प्रसाद दिर रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। राव जी जब दरगह मान पावे, नानक पद से तीकर जावे। जय प्रसाद रो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जिस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके, मन छाणनी पर ठाकर पर ताके। जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे। जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद भूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद अस वस्त सवारी, मन ते प्रभु को कबू नाम सारी। जय प्रसाद भाग मिलक तना, राग प्रोहे प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठ सत से त्याय। तिसे त्याय जो एक लख, इहां उहां नानक तेरी रखे। जय प्रसाद करे पुन बोदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभु को साथ साजदारी। जय प्रसाद तेरे सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्र है, गुरप्रसाद नानक जस कहे। जय प्रसाद सुने करण नाद, जय प्रसाद पेखे विस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुसहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फले। जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुसह समावे। ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा जूरे। जय प्रसाद तू पावे साज, रे मन मेरे तू दास राज। जय प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्वधान प्रभु तेरी माया, आपो कछु न किनु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। श्लोक अगम गात पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साजना की आचर्य कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रटे सो ज्ञान।
साध के संग मुझे प्रभु नेरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध के संग मनोहर बहन साध के संग न कथू तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पैन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग मां पुनीत साध संग के सोने बैर साध के संग बिगा पैर साध के संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाही हो ताप साध के संग तजे सव आप आपे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बाने आई साध के संग न कबू धावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस को चल रहे साधु के संग आजर सह साध के संग बसे थान उचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नान साधु कै कुर्बान साध के संग सब को लोधारे साध संग साजन मीत कुटम ने तारे साधु कै संग सोतन पावे जिस तंते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सोवा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नान साध कै संग सफल जन्म साध के संग नहीं कछकाल दर्शन भेट तो होत निहाल साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यम सुहेला साध संग बिचरत मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न मृथा जावे पार ब्रह्म साध हृदवसे नानक उतरे साध सुनसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मनते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे साध कै संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संग घत पे हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नान साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बख्याने साध की उपमा तय गुणते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूझते मूची साध की शोभा साध बन आई नान साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोहे अवन पेखे एक सबिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पावान ब्रह्म ज्ञानी कह तीरजे ज्यों बसदा को खोदे को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का है गनाओ नान ज्यों पाव का सह सुहाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मनो ए प्रगाश जैसे धार्यो पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कह नायो मान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने सबदे नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर में आ ब्रह्म ज्ञानी ते किश बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृश्य अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं मिनास ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह ओ सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुबल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नान ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम उधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सज जागत ब्रह्म ज्ञानी अम्ब त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह होए चंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवे आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नान ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए राखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगलकार ब्रह्म ज्ञानी आम निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम सर्व में पिखे भगवान निमख निमख ठाकर नमस्कारे नानक ओ अपरस सगल निस्तारे अस्पदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परतरिया रूप न पेख नेत्र साध की टैल संत संघेत कर्ण ना सुने काउ की निंदा सब दे जाने आप उसको मंदा गुर प्रसाद बिख्या पर हरे मन की वासना मनते डरे इंद्री जित पंच दोखते रहत नान कोट मदे को ऐसा आपरस वैष्णव सोजे सुपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भैन कर्म करत होवे न कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म काउ फल की ईशा ने बासे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मंत्रने अंतर सिमरन गोपाल सवे ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गद पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्का संग मनते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलक होवे तुझ भगवती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नितनीत मंत्रने हरपे विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय वसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रभु दे राम नाम यातम में सो दे राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कहे उपदेश जग जीवे अर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नावे वेद प्राण सिमृत बुझे मूल सुख में जाने अस्थूल चौं वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा रेस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सात संग पावे जन को ए कर कृपा अंतर उर्धारे पस प्रेत मुग्ध पाथर को तारे सर्व रोग का उख नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कते ना पाइए धर्म नान तिस मिले जिस लिखिया धुर कर्म जिसका मन पार का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दात संतन भाए तिन पाया सदा निक निक रहर जान सो दास दर गए प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे सगल संग आत्मो दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्मे तावे जीवन मुख सो कावे तैसा अर्क तैसा सो सदा आनंद तनय वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरता ऐसा जुगत नानको पर कहिए जीवन मुक्त पार मन के सगले ठाओ जिस जिद घर राखे तैसा दिन नाओ आपे कर्ण करावन जोग प्रभावे सोई पुन हो बसरे हो आप होया अंत तरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता बना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक उस्त करे नेक जाने अंतरा पारावार नानक रचना प्रवरची बहुवध्यानक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट चार बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट वन पर मैं उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट भी स्रोते

आज्ञाकारी प्राजियो जो तुझ भावे सोई फुंतियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हर खरंग हसे कबू निंद चंद व्यवहार कबू वकास प्याल कबू बेता ब्रह्मचार नानक आप मिलावन हार।

जाऊं, कहूं अब कीर्त में आवे कहूं भला भला कहावे, जम प्रभ राखे ते वीर रहे गुर प्रसाद नान सच कहे, कहूं ए पंडित करे व्याख्यान कहूं मोन धारी लावे ध्यान, कहूं तट तीर्थ स्नान कहूं से साधक मुख्यान, कहूं कीट हस्त पतंग हुए जियान, जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे, नान जो पप पावे तिवेच न तिवे न चावे, ज्योत पावे सोई होए नान दूजा मन कोए, कबू साध संग देव पावे उस स्थान ते बहु नावे, अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश, मंतन नाम रते करंग सदा उसे पार, ब्रह्म के संग जो जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग जो सुमाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कहे साधु कुर्बान। श्लोक सुखी वसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नान गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज मान सो नरक बाती हो स्वान, जो जाने में जोवन बंद सो उद्विष्टा का जंत, आप उसको कर्म बंद गावे जन्म मरे वो जोन परमावे, तान पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक इया मुक्ता के सुखवावे, तन मंता होए कर करवावे तृण समान, किश संग ना जावे, बहु लश्कर मान ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश, सब दे आप जाने बलवंत किन में होए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे उतारे शर्म पावे सगले बिरतारे, अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरख फिर फिर अवतार, अनक जतन करा तुम नहीं दरवे हर दरगे को कैसे गवे, आपसको जो भला कहावे तिसे भलाई निक नावे, सर्व की रेंजा का मनोए कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछुए तब इसको उसको ना ही कोई, जावे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब दारे को बैरी मी तब लग ने चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म नाय देश जाए, प्रभ कृपा दे बंधन टूटे गुर प्रसाद नानको जुटे, सहस कटे लक कोट तावे तृप्त ना आवे, माया पाछे पावे अनक भो विख्या के करे, ना तृप्तावे खबका मरे बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोहर बिरते सब काजे, नाम रंग सब सुखोए बड़ भागी किसे प्राप्त होए, कर्ण करावने आपे आप सास दान अन कर जाओ, कर्ण करावन करने आर इसके हाथ का विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रसोए, जो किन्नो सो अपने रंग सब दे दूर सब के संग, बुझे देखे करे विवेक आपे कापे अनेक, मरे नाम से आवे ना जाए नान सदी रह समाए, आप

कौतुक करे रंग पार। मन में अमन अपने माए नानक कीमत कहन जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सत सब कीना कोट मदे किने विरले चीना। भला भला भला तेरे रूप अत सुंदर आ, पार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कड़ कर सुनी सरण वख्याणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत। नाम जपे नानक मन प्रीत, श्लोक संत सन जो जन परे सो जन उदरन हार, संत गिरिंदा नानका बोर बोर अवतार अष्टपदि। संत के दुखन हार जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा तेहीन, संत के अति गौर करना कोई। संत के दुखन थान पृष्ठ होए, संत कृपाल कृपा जे करे नान, संत संग निंदक भी तरे।

संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग जन लवे संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रिक जोन क्रमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को चले संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए संतो की गाथा को नाए नान संत पावे ताए भी गात पाए संत का निंदक मात आए संत का निंदक किंटिक न पाए संत का निंदक मात यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्वरो संत के निंदक को सावजो संत की निंदा दोख में दोख नान संत पावे ता उसका भी हो मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का निमित संत के दुखी को ढान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी मांकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्मे मरे संत की दुख न सुखते डरे संत के दुखी को ना ठाओ नान संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अज भी रुटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान भरमाई है संत का दुखी उजल पाई है संत का दुखी अंतर दे दो ता जिन सास मना मृत की लो था संत के दुखी के जड़ कृष्णाए आपन बीज आपे गाए संत के दुखी को अपना राखन हार नान संत पावे ता ले वार संत का दुखी ओ बिलाए जो जल भी हुन मछली तरफड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पावे की तन त्रापे संत का दुखी छुटे केला ज्यो बुआड़ दल खेत माए दुला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सतम त्या कैत किरत निंद का तुरही पया नान ज्योत पावे सोई थी संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगे मिले सजाए संत का दुखी सदा सह काही है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजना आसा संत का दुखी उठ चले निरसा संत के दुख न तिष्ठे कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मिटे कोए नानक जाने सच्चा सोए साब घट तिसके ओ करने हार सासदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात ध्यावो सास करास साब कश्वर दे तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे उड़ भागी नानक जन से श्लोक तयो स्यान सुरजनो सिमरो हर हर राय का सर मन रखो नानक धूप परम पो जाए अष्टपदी मानव की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रहे अगाए बोनत स्नान लागे आए मारे रखे को आप मानु के कृष्णाई हाथ तिसका कंबू सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्तत मन में करनकार करमन मेरे सत विहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सोहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकर का रंग सास संग बिन से सत्संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिठे पाव जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कदार दरगे नानक उजल मता बड़बागी ते जन जग माए सासदार के गुंगाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सासदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुतकी ओ सोजी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नान तेरे निरंजन जानया गुरु प्रसाद अपना सुझे तिसकी जानो तिसना बुझे सास संग हर हर जिसका है सर्व रूप ते वर्जन रहत यंदन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जजन की आसा तिसकी कटिए जम की पासा पार ब्रह्म की जिसमन भूख नान तिसे न लागे दूख जिसको हर ब्रह्म चितावे सो संसोए ला नहीं डलावे जिस प्राव अपना कृपा करे सो सेवको किसते डरे जैसा साध ऐसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तस सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नान सो सुखम सोई अस्थूल ना किस जन्मे न किस मरे आपन चलते आप ही करे आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रिष्ट आपे आप सगल में आप अनक जुगद रच था प्यो थाप अविनाशी नाई किस खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अभेव पुरख प्रताप आप जबायत नानक जाप
ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦੈ ਤਨ ਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਪ ਸਾਣ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸਰਜ ਭੈ ਨਿਹਾਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।

करने हार पछाने सोए प्रागा किया जन्म ही लगाना जैसा सा तैसा दिशाना जिसते उपजे तमाय समाये सुख निधान उन्हू बने आए आपस को आप दिनों मान नान प्रभजन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभिरथा जन हार जाके सिमरन उतरी है नान तिस बलिहार अष्टपति टूटी गान हार गोपाल सर जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माए तिस्ते मृथा कोई ना है रे मन मेरे सदार जावे अवनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जेसो प्राणी लोचे कोए तिस में नाए तेरे किस काम गत नानक जाप एक हर नाम रूप बंद हो।

ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंद के ठाकराया पे वर्तनार नानके को पतरियार दूजा कह दिष्टार अष्टपति आपको दे आप सुनने हार आपे का विस्तार जाते पावे तां सिष्ट पाए अपने पाने ले समार तुम ते भिन्ने किशोए आपन सूत सब जग परोए जाको प्रभु जी आम जाए सच नाम सोहे जन पाए सो सुंदर सी तत्का वेता नान सरल श्रेष्ठ का देता जी अंतर सत्ता के आदि दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस को न मारे सो मुआ जिस मनो सारे तेस्ता जबर कहा को जाए सच एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब अंतर बार जानो सात गुण दान व्यंत पार नानक दास दावले हार पूर्ण पूर है दयाल सभी परोध कृपाल अपने अंतर जामे अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रे व्या प्रतिपाले जीन व पाद जो जो रचियो सोते जते आदि जिस पाव तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गाय मन अंतर विश्वास कर मान्या कर्ण हार नानक एक जान्या जल लगा हर एक कह नाए तिसकी आत्म मृत्यु आए सेवक को सेवा बनियाई हुकम बूझ परम पद पाई इसे ऊपर नहीं विचार जाके मन मुसारंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदर पूजे गुके पैरे लोक सुवे पर लोक सुवे ले नान गर्भ आपे मेले सा संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम दत करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गावो प्राण तन काए सुहाओ वाट पैर प्रपेख नेरा मिटे ज्ञान मनसे अंधेरा सुन उपदेश देव सावो मन से नान बल पावो हालत बलत दोले सुभा राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे दिशा प्रिख्या मंत्र नाम ज बोल बुलाए दुख दर्द मन ते बोझाए सच व्यवहार करो व्यापारी नरक ने वेखे तुम्हारी एक टेक रखो मनमाए नानक बहु नावे जाए तिस्ते दूर का को जाए उपरे राखण हार त्याए निरभो जपे सगल भौ मिटे प्राव कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रा राखे तिस नाए दुख नाम जपत मन हो सूख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर डाडा गुरसूरा नान ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जागी दिष्ट दर्शन भीख श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सबल दर्शन सुंदर आरूप धन सेवा सेव प्रवाण अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे जोत नाल ताके निकना अवध काल अमृत वह मरावत बाया सा संग नान करते आया श्लोक ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान देर विनाश हर कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी संत संग अंदर पे डिटा नाम प्रभु का लागा मीठा सरल समिग्री एक कटमाए अनक रंग नाना अधिष्ठाए नौन दिवन प्रकार नाम देही मैं सब स्नान सुन समाध अन तैनात कह न जाए चर्च में समाध तैन देखिया जिस आप दिखाए नान तेजन सोजी पाए सो अंतर सो बार अनंद कड़कड़ व्याप रे आप मन तरण माया आकाश व्याल सरल लोक पूर्ण प्रतिपाल बन तैन पर्वत है पारम जैसिया कहता कर्म पौन पानी वैसन तरमाए चार कुंडा दिशे समाए दिते पेन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नान सुख भाओ भेद प्राण सिमृत में देख ससे सुन खतर में गवाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल कबून डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइय गुणे मोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धारियो स्वामी ओत बोत गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन में विसाद संत जना का पेखन साहब ब्रह्म संत जाके हृदय सब धर्म समझना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस की ए रहत सत वचन साधु सो कहत जो जो ऐसो ऐसो माने कर्ण करावन हार फिर जाने अंतर बसे बार भी ओ ही नान दर्शन देख सब मोही आप सत किया सत सत दिस भाव दे सगली उस भाव दिस भावे ता करे विस्तार दिस भावे ता एक अंकार अनक कला लखी न जाए जिस पावे जिले मिलाए कम निकट कम कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतर का से साप जनाए नान तिजन आप जाए सरभूत आप वरतारा सर्व नैन आप वेखण हारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आपन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सबके मत लिप्त हो रहे जो किश कहना सो आपे कहे आग्ञा वे आग्ञा जाए नान जा पावे तले समाए इसते हुए सुना ही बुरा वरे कहो हो कने किस कराया भला कर दूदा निकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज जोत बोध आप संग राज ताकि गदमत कहीं न जाए दूसर होए तो सो जी पाए
ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕੇ ਜਾਨ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆ ਮਿਲਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਸੋਏ ਓ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਆਇਆ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਏ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਜ ਆਵੇ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਭੇਗ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਕੋ ਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚੰਦ ਆਸ ਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਧਰੋ ਹਰਤਨ ਕੇ ਪੜ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅਮਦਰਸ ਪੀਓ।

उत्तम श्लोक साध के बचन हमली लाले रतन संत कुमार दहो दुधार आप तेरे लोका निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुनंद करे प्रभु गाजे प्रंटे गोपाल मात के माते नान गुदरे तिनके साथे सारन जोग सुन सड़नी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पै सब रेन अमृत नाम सात संग लैन सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण होए सेव की सेव आल जंजाल विकार तेरा तेरा नाम सुन रचना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नानक ने भी खे बमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन वसे सो निधान सर्व दिशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोहे सब ते ऊच पाए स्थान बो न होवे आवन जान आरतन कार चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांद रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वत सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब के मत सकते उदास सुंदर चतुर तत्का वेता सुंदर सी एक दिश्चेता है फल दिशन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने निधान जपे मन कोए साब जुग में ताकि गातो हे गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सर्वमतान केवल हर नाम गोविंद भगत कह मन विश्राम कोट प्राद सात संग मिटे संत कृपा दे जमते छुटे जाके मस्त कर्म पर पाए सा सरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने नाय प्रीत ते जन आवे हर प्रचीत जन्म मरण ताका दुख निवार दुलभ दे तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृता की वाणी एक नाम मन माए समाणी दुख रो बिनसे भरम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक गुण

व्यास मन ने के गद कही न जाए देखो कह पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मन ने का बैकरण विचार ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन न सुरत होए मन बुद्ध मन न सगल पवन के स्वद मन न मोचोटा न खाए मन न जम के साथ ना जाए

नानक पवन अपेख ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव अंदर के मान पंचे सो है अंदर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान देखो कह करे विचार करता क्या करना है नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोषा प्रक्रिया जनसूत

कित तन सुअल रूप कित दात जाने कौन कूत कित पसाओ को कवाओत ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत पाव साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख रन मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास। असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सचि असंग दाचार असंग सूर मोह पाख सार असंग मोह लिवलाय तार।

असंख मूर्ख अंध कोर असंग चोर हराम खोर असंग कमर कर जाहे जोर असंग अलवढ़त्या कमाहे असंग पापी पाप कर जाहे असंग कुड़ियार कुड़े फेराहे असंख मलेश मल पाख खाहे असंग निंद से कर पार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार ज्योत पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन लिखे तो सुर नाहे जे फरमाए तिवत पाहे।

तु सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर तंदे पानी धोते उतर सुखे मोद पलीते कपड़ होए देसा भूण लइए ओहो तोए।

स्वासा बाणी बर्मा ओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सुवेला भगत कवण कवण थित कवण वार कवण सरते महाकवण जित हुआ आकार वेल न पाया पंडते देहो वेले पुराण।

ले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखे सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रत्न पाए तेरे अड़सर तीर्थ नाले गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदनु गावे जोत पावन रते तेरे भगत रसाले

ताकि अगला कथिया न जाए जे को कह पिछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सुधा की शुद्ध

जियो एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपे छंद त्वय प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहंजे रूप रंग रेख पे को कह नान सकत कह अचल मूर्त अनुपव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्राण शाह शहान गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन त्रण कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पुजंग प्रजा छंद नमस्त महाकाले नमस्त कृपाले नमस्त रूपे नमस्त अनुपे नमस्त भेखे नमस्त लेखे नमस्त काय नमस्त जाए नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त नामे नमस्त ठामे नमस्त कर्म नमस्त धर्म नमस्त नाम नमस्त दाम नमस्त जीते नमस्त पीते नमस्त बाहे नमस्त डाहे नमस्त नीले नमस्त नादे नमस्त शेदे नमस्त गादे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त नामे नमस्त ठामे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त उधारे नमस्त पारे नमस्त सोएके नमस्त अनेके नमस्त पुते नमस्त जुपे नमस्त निर्कर्मे नमस्त निर्भरमे नमस्त निर्देशे नमस्त निपेशे नमस्त निर्नामे नमस्त निर्कामे नमस्त निर्धाते नमस्त निर्गाते नमस्त निर्दूते नमस्त पूते नमस्त अलोके नमस्त अशोके नमस्त निर्तापे नमस्त अथापे नमस्त त्रमाने नमस्त निदाने नमस्त अगाहे नमस्त बाहे नमस्त त्रिवर्गे नमस्त सर्गे नमस्त प्रभोगे नमस्त सुजोगे नमस्त रंगे नमस्त पंगे नमस्त गम्य नमस्त सतरम्य नमस्त जराश्रय नमस्त नराश्रय नमस्त जाते नमस्त पाते नमस्त मजवे नमस्त सत अजवे अदेश अदेशे नमस्त पेशे नमस्त निर्दामे नमस्त निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्त सत देवे नमस्त पेवे नमस्त अजन्मे नमस्त सो बनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्त सत दयाले नमस्त वरने नमस्त मरने नमस्त जरार नमस्त कृतार नमो सर्व धंदे नमो सत बंदे नमस्त साके नमस्त निर्वाके नमस्त रीमे नमस्त करीमे नमस्त अनंते नमस्त

महंते नमस्त रागे नमस्त सुहागे नमो सर सोख नमो सर पोख नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो पोग भोगे नमो सर दयाले नमो सर पाले चाचरी संत वाय प्रसाद अरूप है नूप है जू है भू है लेख है भेख है नाम है काम है देह है बे है जीत है पीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है जय है जाद है जन्म है पर्ण है भूत है पर्ण है गंज है बंज है जूझ है जंझ है मीक है फीक है दंद है बंध है नूज है सूझ है काल है जाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नृसीख है नलंब है सम है गम है जम है भूत है शूत है लोक है शोक है कर्म है परम है जीत है पीत है वाह है गाह है मान है निधान है नेक है फिर एक है भुजंग प्रजा छंद नमो सर माने समस्ती निधान्य नमो देव देवे निखे अपेवे नमो काल काले नमो सर पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्वौणे रंगे नाथे संगी प्रमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगे नामे समाति स्वरूपे प्रभंगे प्रमाते समस्ति विभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज जोश्रम परम रूपे नमो जोग जोश्रम परम सिद्धे नमो राज जोश्रम परम विरदे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी परमे भोगी भुगते नमो जोग जोश्रम परम जुते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत परे देवे सुधर्मे नमो रोग हरता नमो राव रूपे नमो शाह नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नम शिशनान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सजदानंद सरण प्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा विद्धकर्ता दुद्वार्धहर्ता परम परम परमेशन पोषपालन सदा सर्वदा सिद्धाता दयालन शेदी भेदी नाम काम समस्तो प्राची समस्त धाम तेरा जो चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पै हैं प्रभु हैं जू हैं देस हैं भेस हैं भजाऊ प्रजा छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निधान्ये नमस्तम नराथे नमस्तम परमाथे नमस्तम अगंजे नमस्तम पंजे नमस्तम काले नमस्तम पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेसे नमो राज राजे नमो साजे नमो शाह शाहे नमो मा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दर्शन नमो सर्व कीर्तन नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे खिजे पीजे समस्तं प्रसीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदनवासी चर्प छंद प्रसाद अमृत करमे मृत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खल धर्म अख कर्म

पे हूं। सर्वं काले सर्वं पालेराल शंदाव प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जौन पुरख पार सर्वमान त्रिमान देव भेव आद उदार सर्व पालक सर्व काल सर्व कोपन काल जतर ततर विराजी अवधूत रूप विशाल नाम ठाणा जात जाकर रूप रंग नरेख आद पुरख धार मूर्त जौन आद शेख

त्रैत के धरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जानिए है, सर्व पर है, सर्व कर है, सर्ववासी है, सर्वनाशी है, कर्णाकर है, विश्वंभर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से है, खल खंड से है, परते परण है, करणा परते पर है, कर्णाकर है, अजपा जपे अथपा थपे अकीर्त कीर्त है, मृत मृत है, मृत मृत है, कर्ण कीर्त है, कीर्ता कीर्त है, धरणी तीर्थ है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकीर्त कीर्त है, मृत मृत है, अजब कृत है, मृत मृत है,

अपने अकलंकृत हैं, सर्वकृत हैं, कर्ता कर हैं, अर्था हर हैं, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रजा छंद। नमो सूर सूर्य नमो चंद्रे नमो राज राज नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकार नमो तेज तेज नमो वृंद वृंद नमो बीज बीज नमो राजन तान सात रूपे नमो परम तत्म अतत्म स्वरूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्ध नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलाकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र नाद भूते अलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आस आसे नमो वम वंके अपंगे स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी कामे कश्री छंद जय लय भय वै मू जू नास कास अगंज भंज लख भख काल दयाल लेख भेख नाम काम गाह डाह नाते परमाते जोनी मोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्म भरम गंजे लेखे भजंग भजा छंद। नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणास अगंजला नाम समस्तल निवास निरकाम विभूते समस्तल स्वरूप कुकर्म प्रणास धर्म विभूते सदा सचिदानंद चतुर्म प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तल निवासी जाय विभूते जाय विकनी में हरियंकर यंकरी मही में चतर चक्रवर्ती चतर भुक्ते स्वं स्वं सर्वदा सर्व झुकते सर

जाने। जीए जंत सब खेल तेरा क्या गुआ बखाने आखे तो वेखे सब तू जगत पाया कहे नान तू सदा गमे तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन मसाया जी जन सब तुद पाए वेख परसन आया। लाभ लोभ अंकार चुका सतगुरु पला पाया कहे नान जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया। भगतां की चाल नाली चाला नाली भगतां केरी बिखम मार चलना लभ लोभ अंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजार वास ना समाणी कहे नान चाल भगतां चुको चुगन नाली ज्यो तू चलाए ते चले स्वामी और क्या जाने गुण तेरे जिव तू चलाए ते वे चले जिन्ना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे जिसनों कदा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नान सच्चे साहिब ज्यों पावे तिवे चलावे। ए हो सोयला शब सुहावा शब्द हो सुहावा सदा सोला सतगुरु सुनाया। ए हो तिन कह मन वसया जिन तुरों लिखिया आया एक फिर एक नेरे करे गल्ला गली किन पाया के नान शब्द सोयला सतगुरु सुनाया। पित हो से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पित हो गुरम जिनी त्याया। करमी सहज ना उपजे बिन सहजे सहसा ना जाए ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए।

सोक्यो मनो सारे माता के उदर में व्रत पाल के सो क्यों मनो विसारिय मनो क्यों विसारिय वरदाता जे अग्न में आहार पहुंचावे उसनु के पुन सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सा संभालिए कहे नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारिय।

इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद श्री राजा तुझ जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन नाम वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानके शरीर प्रमाण हो आ जिन सतगुर सिंह चितलाया।

जय प्राण कोर राहो। मन तन निर्मल करत के आरो अर सिंचे सुदा संजोर। या रस में मग्न होत कृपाते

अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंदन शोर आयो शरण दीन दुख पंजन।

नानक बंदन शोर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत सतगुरों की अपार बख्शिश रहमत दा सदका अमृत वेले का सुहावना समा प्राप्त होया है। जो भी माई भाई रेडियो राही अते जो गुरु के चरणों में आ करके जुड़े ने सतगुरु रहमत करन आप सारे ने हाजरी दर प्रवान करन नर करो नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शन। सो आओ छुट्टी वाला दिन है मत चढ़ के आ करके गुरु के चरणा च हाजरियां लवाइए। जो समा मिलिया है उसका लाभ लईए। सत्कारयोग भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब वाले उन्होंने पासों अपना श्री आसा दी वार का कीर्तन सरवण करना है। उस वड्डेगियां वड्याइयां सरवण करनियां ने गाउणियां ने। ओ महाराज सतगुरु का फरमान है कि सतगुर वड्डा कर सलाही है। क्या ग्री नवाज सब तो वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सानू माण होना चाहिदा है कि मेरा गुरु सब तो वड्डा है, उस तो उपर कोई नहीं है। आओ दे चरणा नाल जुड़िए अते गुरु कियां खुशियां प्राप्त करिए। अज दा महान दिहाड़ा जिस तरह आप सारे जानते हो सालाना प्रोग्राम है बाबा फरीद जी का आगमन दिहाड़ा। जो फरीदकोट दियां संगतां अते बेरी दियां संगतां रल मिल के हर साल मनाउंदियां ने वो दिहाड़ा अज है। सो दिन दे दीवान दे विच आपां रागी सिंह पास तों गुरु का शब्द अते गुरु का इतिहास सरवण करना है। बद चढ़ के आके दिन दे दीवान दे विच हाजरियां भरो तां कि सानूं वो महान भगत जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अंकित है उन्हां दा जीवन सरवण कर सकीए। किहो जिहियां मुशकतां उन्होंने घालियां, किन्नी भगती कीती ते कित्थे पहुंचे। आपां वी उन्हां दे पूर्णियां ते चल के अपना जन्म सफला करिए। आओ कीर्तन सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अपने आप साजियो अपने रजो ना हो दो एक साजिए कर आसन डेठो चाओ दाता करता आप तू तुझ देवे कर बसाओ तू जानो ही सब से दिल सह जिनको आओ कर आसन डेठो चाओ कर आसन

साहिब जी सतनाम धन वाहे गुरु जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए बेशुमार अथा अगणत अतुल

उपदेश मैं मल मल के तेरे चरण धोवांगा, ए मन भी तेनू दे छड़ांगा। मैं तेरी शरण आया हुण मैनू जुगत दस तरीका दस। कोई जन हरस्यों देवे जोर, चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर। तरीका दस तरीका। ते फिर तरस आ गया ते कहन लगे हुण पेन ते कागज, कागज ते कलम तैयार कर, तेनू भोलना जाए। मैं तेनू मैथड दसन लगा, बस दो तीन गल्लां दा ध्यान रख लई। कहन लगे की? आखन लगे

कोकाय। मान अभिमान मंद है नाही, मान अभिमान मंद है सो सेवक नाही। जिदे कोल अजे मान है अभिमान है वो प्रॉपर सेवक अजे नहीं बनया। तू कहना है कोई जन हरस्यो देवै जोर, चरण गहो बको शुभ रसना, ते उतरे है मान ना कीजै। मान छड़ देना है, हंकार ते मान च की फर्क है साथ संगत जी। ए इको सिक्के दे दो पहलू ने गुरमुखो, गल आ गई है ते बेनती करन लगा। हंकार थोड़ा जिहा मोटा हुंदा है, स्थूल हुंदा है, मान थोड़ा जिहा जिवें रेग मार नाल रगड़ के किसे नूं पॉलिश नहीं कर दीदा, मान इस तरह दा हुंदा है। पहलो पक्षियां दे फरां ते असीं लिखांदे सां बई फलाणा सिंह सानो फलाणा सिंह सानो फलाणा सिंह सानो फलाणा सिंह, चार पांच पुश्तां दे नां लिखदे सां, इह पक्खे दी सेवा कीती है, इह हंकार है। फिर धर्म प्रचार बड़ा होया, थोड़ी जी समझ आई भी नहीं ये गलत है, छड़िया फिर भी नहीं, फिर कहन लगे सतगुरु ने किरपा करके अपने फलाने सेवक तो ये सेवा लई। ये भी मान है, वाहगुरु ने तेरे चेहरे ते लिखिया भी मैं तेनू अखां दित्तियां विच रोशनी पाई, नक लाया, कन लाए, होठ दिते, कित लिखिया तेरी पिठ ते लिखिया, तेरी छाती ते लिखिया, ते तू एक पखा 500 दा 1000 दा दे के ओदे पर्दे उत्ते एक सूत्र जगह खाली नहीं छड़दा, सारे खानदान दा नां लिख देना, जताना है। इसलिए सब तो पहला मान छड़, मान न कीजै शरण परीजै। मान नहीं करना, वाहगुरु दी शरण विच पै जाना है, शरीर करके भी ते मन करके भी। ते तीजी गल लिखी है करै सो भला मनाई, ए बड़ी औखी है, करै सो भला मनाइए, जो तेरी आग्या विच हो रहा है वो सत बचन है, वो सत बचन है। भाव रजा विच राजी रहण दा वल सिखना, किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल, हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। फरमान तेरा सिरे ऊपर फिर ना करत विचार, करै सो भला मनाइए। फरमान तेरा सिरे ऊपर, फरमान हुक्म, तेरा हुक्म तेरा फरमान सिरे ऊपर, भाव मेनू सिर मथे प्रवान है, फिर ना करत विचार। कोई बचन करे ते असीं कहिंदे आ कोनी विचार करके दसने, भगत कबीर साहब कहिंदे तेरे हुक्म दे मामले च कोई विचार नहीं, भी भलके दसांगा लौडे वेले दसांगा, नहीं जो तू हुक्म कर दिता सत बचन है। देखो ये ते मनना ही पैंदा, जदों असी मर्जी नाल नहीं नाराज जे होके मानिया हुक्म है, जे रजे रजा विच राजी रहण दा वल आ जाए फिर वह भाणा बन जाता, भाणा हुण पा गया जो तेनू ठीक लगता है, पर्यायवाची ने। तो मैं अर्ज कर रहा सा फरमान तेरा सिरे ऊपर फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्तार। दरिया भी तू है मलाह भी तू है, और ए वकारां दे सागर चो भवसा संसार समुंदर तो मैनू तू ही पार कर सकना है। रजा विच राजी रहण दा वल मैनू आप जी ही सिखा सकदे हो। बंदे बंदगी इख्तियार, इत्थे कक्के नाले पाठ अर्थ करन लग्या इख्तियार कहना पएगा, हे बंदे तू वाहिगुरु दी बंदगी नू इख्तियार कर लै, साहिब रोस धरो के प्यार। मालक भावे तेनू रोस करे भावे प्यार करे, भाव भावे सुख दे ते भावे दुख दे, तू इको ही काम करना है भी बंदगी इख्तियार, ते कहना नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार। मैं तेरे नाम नू अपना आधार इस तरह बनाया है जिवें उस
जल बूटी का आधार जल हुंदा है, जल रवे ते हरी रहिंदी है, जल सुक जाए ते वह भी सुक जाती है। नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। इनू कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परिजै, करै सो भला मनाइयै, सुन मीता हो तेरी शरणाई आया, प्रभ मिलो देव उपदेसा। अज भी गुरु अर्जन साहब सचे पातशाह बख्शिश कर रहे ने, कोई जन हरस्यो देवै जोर, कोई मनुख मेनू हरि प्रभु नाल मिला दे, ते मैं चरण गाहो बको शुभ रसना, ओदे चरण घुट के पकड़ लवा, ओदा शुकर शुकराना करा, अपने प्राण भी ओदे तो निशावर कर दिया। रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो, हर सिंचै सुधा संजोर। अपने मन नू ते अपने तन नू निर्मल करत क्यारो। सतसंग जी क्यारा शब्द है, जदों किसी फसल नू बीजना हुंदा है ना, ब्याई करन तो पहला जे उहदे च वत्तर नहीं, नमी नहीं, मॉइस्चर नहीं, ते फिर उहनू पहला पानी नाल भरना पैंदा सी। थोड़े जिहे मिंटां दी गल एकाग्रता बनाई रखो, एक वारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री, ये जरूर तरस करिया करो, ये मेरी सुनिमर बेनती है। मैं फिर तुहानू चेता करा दिया, मैं आने वाले कथावाचकां दा काम थोड़ा आसान करना। यह जिहड़ा कथा दा विशा है ना पंथ जी, ये बिल्कुल इस तरह हुंदा जिवें झील नहीं रुकी हुंदी, बिल्कुल शांत है, तुसीं उहदे च एक कंकर सुट दिओ, भावें उह 10 मीलां च झील बनी हुई है, सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। कीर्तन होया, टीम वर्क है, तीन सिंह बैठे ने, साज वज रहे ने, वह गा रहे ने, थोड़ी बहुती गल उहदे च जज्ब हो जाती है। पर इत्थे मैं बोल रहा कल्ला, उत्थे तुसीं बोल रहे हो दो जने, फर्क सिर्फ इतना है भी मेरे कोल साउंड है, तुहाडे कोल साउंड नहीं, पर मैं एक हाँ ते तुसीं दो, डिस्टर्बेंस हुंदी है। होर किसी नूं हार्ट करन दा मेरा प्रयोजन नहीं हुंदा। एक वारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री, कह दिया करो गुरमुखो सतनाम श्री। जदों किसी पैली की ब्याई करनी होवे ते फिर उहनूं असीं पहलां भरने आ पाणी नाल, ते जिन्हां ने उत्थे वाही कीती उहनां नूं पता है बई पाणी दा साधन जिन्ना कमजोर है क्यारे उन्ने ज्यादे पाने पैंदे ने, पाणी दा साधन जिन्ना ताकतवर है उन्ने क्यारे घट पाने पैंदे ने। क्यारे दा मतलब हुंदा भी छेती भर जाए, विच थोड़ा उच्चा नीवा थां है ते पाणी उत्थे भी चढ़ जाए, फिर वह असी आम तौर ते ज्यादा नहीं, ते हुण जे हुण ते चलो आ कंप्यूटर करा आ गए ने, नहीं ते मेरी संभाल च अठ अठ नौ नौ दस दस क्यारे एकड़ विच पाने पैंदे सन। इस तरह अपने मन नू ते अपने तन नू, तन नू मीनज अपनियां इंद्रियां नू क्यारे बना लै। मन तन निर्मल करत, इन्हां नू निर्मल कर, किवें करां, कहन लगे क्यारो, इन्हां दे क्यारे बना लै। एक दिन कन्नां नू काबू कर लै, बई तुसीं निंदिया ना सुनिया करो, अठां क्यारियां नू कट्ठा पाणी नहीं लाणा, सिरे वाला भर के फिर उहनू भर के दूजे नू ला लैणा, दूजे नू ला के पहला कन्ना वाल ध्यान दे लै, अगले दिन अखां इहदे नाल कोई रूप नू मैल नाल नहीं तकना, फिर जीव दा अगों इसे तरह बाकी इंद्रियां नू एक एक करके इन्हां सारियां नू काबू च कर लै, ते आत्मक जीवन देन वाले नाम जल नाल इन्हां नू सराबौर कर दे। इहनू कहिंदे ने मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै, जिहनू पंजाबी च असीं प्याणा कहिंदे आ उहनू सिंचना कहिंदे ने, हर सिंचै सुधा, सुधा मैंने अमृत, आत्मक जीवन देन वाला नाम जल, संजोर, संजोर चंगी तरह जोड़, चंगी तरह भर दे। कर हर हट माल टिंड परोवो, तिस पीतर मन जोवो, अमृत सिंचो भरो क्यारे, तौ माली के होवो। एक होर थां ते क्यारियां दा जिक्र आउंदा, कर हर हट, जिवें खूह दी हरट हुंदी सी, माल वह जिहड़ियां टिंडां दी माल हुंदी सी, परोवो ते जिवें खूह दे अगे बलद जोई दे सन, इहदा इह आत्मक जल नाल सराबौर करन लई अपने मन नूं अगे जो दे, मन नूं टगे बना लै, मन नूं बलद बना लै। वाहिगुरू।
ਕਰ ਹਰਹਟ ਮਾਲ ਟਿੰਡ ਪਰੋਵੋ ਤਿਸ ਭੀਤਰ ਮਨ ਜੋਵੋ

जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे

असंख जप, असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचारे, असंख सती, असंख दातारे, असंख सूर मोह पख सारे।

असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे,

अमोल गुण अमोल व्यापार अमोल व्यापारिये अमोल भंडार अमोल आवह अमोल ले जाहे अमोल पाए अमोला समाहे अमोल

मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करह बेपोत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत गयान दया भंडारण घट घट वाजा है नाद आप नाथ नाथी सब जा की।

आवहो संत पिहारी हो अकत की करह कहानी करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है तन मन धन सब सौंप गुरु का हुक्म मनी है पाई है।

लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्यो तिखी वाल हुन की एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी।

एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मन वसिया, जिन धुरहों लिखिया आया, इक फिरै कनेरी करह गल्ला, गल्ली किनै ना पाया, कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहित सिओ, पवित संगत सबाइया।

प्यास न जाए, होरत के तह जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पिए हर रस, बहुड़ न तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाई है, सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आए। ए शरीरा मेरिया हर, तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया।

0: बिनस जाए जो निमख मह सो अल्प सुख पनिए रहाओ परत पाले अपयाओ दे कछ ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अछल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप करे आनंद जन अचरज आनूप सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग साधा सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग साधा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिनी सास गिरास त्याया मेरा हर हर से साची दरगे जन बने सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम।

फरीद जी लम्मे पए सन, एक कां आ गया, पैरां वल्लों फरीद जी नूं चुंझ मारन लगा, तली ते चुंझ मारी, मास नहीं मिलिया। फरीदा रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोई, मास सीगा ही नहीं, क्योंकि बिरहा दी अग्नि ने तन सुका दिता। बिरहा बिछोड़ा, महापुरख बचन करिया करदे सन, धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, परम पूज श्रीमान संत सुजान सिंह जी महाराज। पहली अवस्था है विछोड़े, किसे नूं अनुभव होवे कि मैं विछड़िया हां, नहीं ते बहुती दुनिया नूं विछोड़ा अनुभव ही नहीं हो। कलगीधर पातशाह जी ने की ख्याल पेश कीता मित्र प्यारे नूं, हाल मुरीदां दा कहना। हजूर साहब जी दी पावन पवित्र धरती ते एक सिख ने आके खबर दित्ती, पातशाह भाई दया सिंह जी चढ़ाई कर गए हैं। हजूर दे भी नेत्र सजल हो गए, मेरा प्यारा चला गया, मैनू बिना दसिया ही चला गया, दस के ते जांदा। मेरा सुनिया ते लै जांदा, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, कि तुद बिन रोग रजाइयां दे ओडन, किसे नू रजाई दा सुख माण दिया वेख के कोई बड़ा खुश हो रहा, इस कोल रजाई है ते रजाई वाला ओ बिरहा दी अग विच पिया बल रहा है, कदी मेरा प्रीतम मेरी रजाई मेरी बुकल विच कोल सी। तुद बिन रोग रजाइयां दे ओडन, हुण इंज जाप रहा नाग निवासा दे रहना, ए रजाई दा कोई सुख नहीं अपने प्रीतम बिना, इंज जाप रहा है जिवें सौ सौ नाग मैनू इकट्ठे पे डस दे। सूल सुराई खंजर पे आला, ए सूला बन पे पे चुभदे हन, ए हिरदे विच खंजर पे चुभदे हन। बिंग कसाइयां दा सहना, यारले दा सानू सत्थर चंगा, सत्थर मौत भई मर जावे की आखी दा सी, भई सत्थर विछा दे घर विच सत्थर विछदा सी, यारले दा सानू सत्थर चंगा, पाठ खेलिया दा रहना, खेड़ा खुशी, यार तो बिना कोई खुशी नहीं, बस मौत ही मौत है। पाठ अग दा भांबड़ पाठ पिया मचदा है, ये खुशियां नहीं हन, अंदर बिरहा दी अग्नि है, एक किसे विरले नू विछोड़ा अनुभव हुंदा है कि मैं अपने प्रीतम अपने गुरु अपने साईं अपने परमेसर तो विछड़िया हूं। जिसनू अनुभव हुंदा है वो फिर अगली जमात दा उद्दम करदा है, वो कोई वसीला लगदा, कोई मेरा मिलाप करा दे, मैनू मेल दे। ते जिसनू वसीला प्राप्त हो गया, विचोला कोई बन गया, जिसका कोई विचोला है, उसनू फिर की होंदा है, उसनू वसल होंदा है,
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਫਿਰ ਵਸੀਲਾ ਵਿਚੋਲਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਧਾਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

परम पूज श्रीमान संत सुजान सिंह जी महाराज जी दी अपनी गायन कीती होए बंदिश ध्यान विच आ गई। बहुत बिखड़ी है, बहुत औखी घाटी है, उस अवस्था ते कोई पहुंच के ए अखर आखे ता उस दे आखे यथार्थ, पर असा लिया अंदर चली। गुरसिख नू प्रेरणा है लिया अंदर चलिए ज्यों गाड़ी राह। भाई साहब भाई गुरदास जी का वचन है भाई लिया अंदर चलो, मर्यादा तो बाहर ना हो जाना कदे। भरी गड्डी कितों लंघ जाती है ना, भावे किचड़ विच्चों भी लंघ जाए वो लिया पा जाती है, पिछों आने वाले नू रस्ता पता लग जाता है। लिया अंदर चलिए ज्यों गाड़ी राह, हुक्म रजाई चलना। गुरु घर की सब तो वड्डी लीक, सब तो वड्डी मर्यादा की है साध संग निभा, तेरी संगत नाल निभ जावे। जे तेरी संगत विच हाजरी नहीं, भावे घर बैठ के जितना जप तप कर लै ए फलेगा नहीं। संगत की हाजरी अत लाजमी है, अत लाजमी ए गुरु घर की पहली मर्यादा। हुक्म रजाई चलना साध संग निभा, ज्यों धन सोगा रखदा घर अंदर साह। किसे दे घर पदार्थ धन भरिया पिया होवे, फिर चाबी संभाल संभाल के बोझे विच रखदा। ज्यों मर्याद ना छड़े सायर असगा, लत्तां हेठ लताड़िए अजरावर गाहा। धर्म साल है मान सर, मान सरोवर ते हंस बसते हैं और चुगदे की हन हीरे जवाहरात मोती। ते गुरसिख दी की जमात है, धर्मसाल है मान सर, हंस गुरसिख वाह। रतन पदार्थ गुर शब्द कर कीर्तन खा, गुरु के सिखा तू हंस है। हंस हीरे जवाहरात मोती छकदे हन, तू संगत विच आके कीर्तन दा भोजन छकना। देखी किथे कावां वाली कार ना कर ली, कां की करदे हन, हीरे जवाहरात भी सामने रख दियो उसनू मुंह नहीं लावणगे, ओ कंकर मूह विच पावणगे। ए ना होवे किथे तेरी रसना नाम जपण वाली है, ए किथे निंदा चुगली विच पै जावे। कंकर ना मूह विच पा ली, मोती छकी मोती। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने संत सुजान सिंह जी महाराज नू वचन कीता, रागा सिया किसे दी उस्तत ना करी, किसे दी निंदा ना करी। ते महापुरुख सोचन लगे बड़ी औखी घाटी है, बड़ी औखी घाटी संसार है, ना चाहते हुए भी बेवसे बार हो जाने, किसी ना किसी दी निंदा हो ही जाती है, और कईयां नूं ते फिर झस पै जांदा है, लत लग जाती है, वो हर किसी की निंदा ही करते रहते। अजकल जिवें सोशल मीडिया प्रधान हो गया, किसी नूं बात की गहराई का पता ना होवे हेठां कमेंट जरूर कर देना, गुरु की संगत जपो सतनाम श्री, ये निंदा दे पागी। पता ना भी होवे दूरों तकिया ते निंदा कर दिती, कर देने ते उस्तत
ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਰਮਗ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰੀ, ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਤਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਚੜ ਜਾਵਣਗੇ, ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛੱਕ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਕਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਰਾਗ ਹਨ, ਔਖਾ ਤਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਆਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

अल्लाह वाट हमारी खरी उड़ीनी खन्यो तिखी बहुत पीनी उस ऊपर है मार्ग मेरा शेख फरीद पंथ समार। ये दुनिया दे दृष्टांत ये पत्ते पत्ता महापुरख आखते सन अधिकारी नू ते गलिया दे कख भी उपदेश देंदे संसार विचों ही सानू जुगती प्राप्त हुई रब तक पहुंचन की बाणी साडा मार्ग उपदेश है बाणी साडी रहबर ए दसेगी रब की प्राप्ति किंज होंदी है किन्ना नू होई किवें होई। गुरु की संगत जपो।

तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानण नित साच तीर्थ मजना साचन लागे मैल क्या मल धोई है गुणे हार परोए किस को रोई है विचार मार तर तार उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साच पावे आनंद अन दिन हरख साचा दुख कल बिख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा ना बनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते अराध एक अंकार साचा नत दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कह सब कोई के वड्याखिया हम मूर्ख नीच अजान समझा साखिया सच गुर की साखी अमृत पाखी तेत मन मान्या मेरा कूच कर है आवह बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट न भगत भंडारी भरपुर रहया सोई नानक साज

नानक साज कहै बेनंती मन मांजै सच सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।